को खत्म करे। वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, ज़हनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के

0: आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

ओके जी सर अभिवाल जान सर का नंबर ले गया दिखा दीजिए सो अभी वाला जान सर दुकानदार एड्रेस ले गया दिखा दीजिए सो अभी वाला जान सर का एड्रेस ले गया दिखा दीजिए ताहिर कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर ताहिर लाला डीर खूब इंसान दे डीर कदरमन इंसान दे मुंग डीर जद ग्रान इंसान दे जी जमुंग डीर शाहजादा इंसान दे जी अगर सिफात कॉस्मेटिक्स आप पाकिस्तान जी सुम रहम प्रोडक्ट जलन और गदा रिकॉर्डिंग लगवा साले रन बेजर खबर निशारा वो खातर जान था मल सिकड़ी दी न लगे दल बस जवाब और कुम सवाब वाले से फ्री का के मुत ग्रान दी हो बाहर के खैर दा रिकॉर्डिंग लगवा खान سوابی جی سمرا لسنر دیو بیابی الخصوص تاسو لنک روٹ بھی جنہی لنک روٹ سوابی کی دخیران تاہر لالا تاہر کاسمیٹکس انجنرل سٹور جی تاہر

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: हाँ जी जुबा मुंगा कॉल तरफ तक गुरु जी सोखते जी अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह आयत भाई सिंह दे
0: शुक्र दे जी तासु सो को हुकुम देना फयाज सेब सिंह खैता सब पुख्ता ना डॉक्टर सिर नलरी आयाज
1: की
0: दर्द
1: भी
0: सीने की दर्द राजी और मराए बानी दर्द राजी और सुमर वक्त तक तकलीफ थे दो मैस्तों इलाज वगैरह कर दे खास सही शो सही शुला ठीक शो रेडियो तो किधर डॉक्टर साहब देवानी खबर रखी खा जवाब रखी था
1: सुना
0: सही शो सही शो रेडियो तो कक्की रखा डॉक्टर साहब कहीं भी खबर ओके जी डॉक्टर साहब दगा आयाज रोड जमुग दा गले तरन ना अगु छे जमुग वाले दे साहिबा दा अगी प खे साइड प उली की दर्द राजी बिया और सर मराई की दर्द राजी जी दा सो वजूहात की देश
2: जी बिल्कुल दादा उम्र तकाजा हम दा
0: जी
2: और द कैल्शियम या द विटामिन डी कम विटामिन सी जी द दे द कमी प वजह द हम रात लीशी
0: जी
2: और कजो उगोर मनो दा कम नेक सर्च दे दे की कमी मुहरी दी नो दा या कमजोर शी
0: जी
2: और या ची कम दे प कम संभली नागा सर्च कम दे रुआन राशि
0: जी
2: नो मोहरों के दर्द पैदाशी स्वेलिंग पैदाशी इन्फेक्शन पैदाशी नो ब्याह वसरा दा उलिम होगी और वसरा दा लासम होगी दा उस कतल वाली चे स सिम्टम दी स काजिज दी दा से डेर मुंग सरा दा अडुको द जोड़ू दर्दुनो मरीजान अल्लाह पाक हकड़ी दी दी दिम तशरीफ रोड़ी अल्लाह बोला सेहत वर की
0: आज डेर मनन को जी उम्मीद लरम चे द्वीबा डॉक्टर साहब खबर बांधेबा पोशेवी दुतबा जवाब चुकम दे आगा मिलाओ शेवी बिल्कुल तासु लाजिमी क्लिनिक तराशे डॉक्टर साहब उगुरी चे आया सो जुहात तो वजिस तासु दागा मसला चुकम दा पैदा शेवी दा जुबा मुंगा नेक्स्ट कॉलर तरफ ता अस्सलाम वालेकुम जी शुक्र दे जी सो का हुकुम
3: देना
0: मुख्तियार उल्लाह द पालंगुना प्रोग्राम की दरदा हर कले वा यू मुख्तियार उल्लाह साहब बिल्कुल शुक्र दे अल्लाह करम ने तो ऐसा
3: समझी
0: नुम दपासा मेदे बानी उम्र दी सुमर दे अठारह साल दे और सुमर वक्त मेदे बानी दर्द दे सही शुला और घटा तबे नबाद दगा दर्द पैदा शे दे जी रेडियो तो खबर वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब दगा मुख्तियार मेदी बानी दर्द राजी दटी तबे नबाद
2: जी बिल्कुल सिंह को तबे दिलासा दा मैदा जख्मी कीगी
0: जी
2: कुलमी जख्मी कीगी और ब्याज इंसान बांधे दर्द राजी कलच रोटे उखरी दर्द राजी या चे असाब कमजोरी शी नु चे नहर शी नु ब्या पे दर्द राजी नो द द चे गाटा तबर आगले दा नो हाम खा द द प कुलमो की या स्टमक मैदा की बे अल्सर या जख्म जोड़ खड़ी भी यो दे दो उबो इस्तेमाल की मर्च की नुखरी गर्म खुराक न कई इंशाल्लाह गे सर टिक शो टिक नु शो ब्या बदा टीटकोल ग्वाड़ी कतल बग्वाड़ी नो ब्या के दीरा दिशी बिल्कुल दासिंग सर डेर मरीजान अल्लाह पाक कड़ी दी दीदी मराशी अल्लाह बसे हतवर की
0: खा जी डेरा मनने को जी शुक्रिया एंड तशक्कुर बिल्कुल उम्मीद लरो मुख्तियार अल्लाह तासुबा डॉक्टर से खबर बांधने में पोशी हुई तासु तब जवाब मिला शेवी आ बिल्कुल तासु क्लिनिक तो हम रात चले दे इलाज चुकम दे हासिल वाले शे जर तासु द मेदी मसले भी मेदी बेहतरीन इलाज आगा शतदे पो होम्योपैथिक के पजरगाव मरीजान आगा डॉक्टर अकबर कुरैशी से इलाज सरा खुशी दी डेर बेहतरीन रिजल्ट खलकुता मिला शिवे दे दमे दे नोता सो हम कोशिश करे क्लिनिक तराशे डॉक्टर से बस्तासु डायग्नोजिंग बो की स्तासु चेकअप बो की इनशाला तस्तब अल्लाह पाक आगाज सेहत परा की और दिन को कॉल कबल शेम का प्रोग्राम के पास 0313-838-78 बांधने पर आ जाए प्रोग्राम के उम्र कॉल कवाए उदमे से दिलारी हमरा तलाशे मैसेज हम तासुमता कवलेशे जुबा मुंगा बल कलर

खबर दियो को को खबर जननो पलेंदो खुशो को खुशो बंदिज कजो वो लगे दमा।

0: सर्दी पोस को तालाल मास अलमास प्लस की चावे एक छाता कड़े वना
1: हो कज खबर वे खबर वेच बिल तुंदे मा बाश ना दलास निवले नास निवले गर जवना
0: कज खबर वे खबर वे चियर तक देनू माव पुखा पुखा पुछा वजले वजले